0: just take out a number of bricks from them and you can throw at the police. Very, very, very congested lanes leading to Jama Masjid. So this car, which is being shown now, it belongs to a Muslim gentleman. He gave me the vivid description that who all were involved in it. He said, honestly, my new car has been burnt. So there was no sense in arson because the mosque was not going to be taken over. Simple survey was being conducted.
1: And fear-mongering, you say? Fear-mongering by certain leaders?
2: Just a second.
1: Okay, Anila Singh. Sir, mujhe ek minute. Anila Singh ko bhi lane dijiye. Because UP Congress chief Ajay Rai, he has questioned the role of intelligence agencies, as does Mr. Anurag Bhadauri on this broadcast. If it was a well-planned conspiracy, this actually reflects very poorly on the Uttar Pradesh police intelligence gathering system. Does the BJP government in Uttar Pradesh accept that the administration failed to anticipate this mass mobilization despite the commission concluding that the violence was pre-planned, madam?
3: See, it is so unfortunate when I see opposition accusing the judicial commission. All right. So I have a simple question that do you respect the constitution and the judiciary? Only when the court decision suits you, your narrative. And if they give a narrative in the favor of the plaintiffs or plaintiffs who are standing with the Hindus, then you have a problem. A commission which gives a report and tells the Samajwadi Party leaders they were involved in these riots, then you have got a problem. See, it is very, very clear. It was a pre-planned conspiracy. This report has exposed opposition's narrative on police. Violence against police. Names are clearly given that how Samajwadi Party was involved
1: Anurag
3: in it.
1: Bhadauria wants
3: and
1: to respond to you.
3: And
1: Anurag
3: finally,
1: Bhadauria,
3: one more thing just now. No, I have to say one thing here, Gaurav, very clearly. Anurag Bhadauria ji ne bar bar kaha, arre sanitize nahi kiya, Agar ek bahut achha udharan 80-20 ka hai na, wo hai Sambhal. 80% जो वहां पर आबादी है वो उन्हीं लोगों की है जिसकी राजनीति ये लोग करते हैं. 20%
1: लेकिन फिर पुलिस का काम तो अपना फिर भी करना है ना. भारत में नोगो एरिया तो नहीं बन सकते ना. लेकिन अनुराग भदौरिया, आप जरूर जरूर आरोप लगाइए क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को बेनकाब करना. लेकिन अगर आप ही के खेमे में कुछ लोग हैं जिन पर आरोप नहीं है, जुडिशियल कमीशन बोल रहा है उनकी भूमिका रही है, उस पर भी तो कुछ कहिए सर.
2: मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कहते हैं 84% वहां पे कुछ विशेष धर्म के लोग रहते हैं, तो मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, किस धर्म के लोग थे जो चढ़ावा चोरी कर ले गए, वो कौन लोग थे? मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगी.
1: यहाँ पे सब चढ़ावा चोरी पर हमने कई शो किए.
3: आपके जैसे हलाल हिंदू थे जिन्होंने भगवान श्री राम का दिया हुआ जो चंदा चोरी किया है.
2: अपनी बात तो मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप परेशान हो गए.
3: ठीक, मतलब समाजवादी
2: नहीं, मैंने आपके मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला.
3: अनुराग भदौरिया, आप लोग चंदा चोरी करते हैं, आप सनातनी हिंदुओं का अपमान करते हैं जिन लोगों ने चंदा दिया.
2: आपके बीच में नहीं बोला मैंने,
1: केवल अनुराग भदौरिया
2: आपके बीच में नहीं बोला. नहीं नहीं, मैंने बोला कि चढ़ावा चोरी हुई वहाँ पे कौन धर्म के लोग थे, यहाँ पे जिस तरह के छात्रों पे वहाँ जो पत्थर इकट्ठे हो गए थे.
1: ठीक,
2: वहाँ पे
1: आज की मेरी डिबेट संभल पर थी और अनुराग भदौरिया, संभल में कथित रूप से समाजवादी पार्टी के नेताओं के अगर नाम आ रहे हैं, आप उस पर बात तक नहीं करना चाहते. फेयर इनफ,
2: इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं सुन तो लीजिए, इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट, ये मैं आपसे साफ कह रहा हूँ कि ये सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई है.
1: Now let us see what is the next course of action that is taken. Mr. Jain, Anila Singh and Anurag Bhadauria for joining me here on India First. Many thanks. We'll track the story very closely. On the other side is US President Donald Trump at loggerheads with his trusted Secretary of War Pete Hegseth. There is a US media report that claims they had a heated confrontation over the ongoing Iran war. Details coming up.

0: People poured out on the streets, and the government's response made things worse.
1: And it was becoming a citizen-first democracy. And Rajiv Goswami in flames, and I think that, again, encapsulated the Mandal agitation.
2: आप ये बिल को लाना चाहते हैं हमारा जन लोकपाल बिल तो पार्लियामेंट में इस बल के बिल के बारे में चर्चा शुरू कर दो
3: आदे प्रोटेक्टिंग अस ऑलरेडी डिस्ट्रॉइंग अस
1: देयर वाज अ ह्यूज आउटपोरिंग ऑफ एंगर अगेंस्ट वुमेन सिक्योरिटी
4: कौन है कोई बात बताइए

0: Good evening, hello and welcome. You're with this News Today special coming to you from Mumbai. And I'll tell you why in a moment, why I'm in Mumbai. Because our big talking point is the RSS chief, Mohan Bhagwat, has reached out to Gen Z and Gen Alpha here at a convention where we are at the moment. How is Gen Z reacting to the RSS chief's outreach in the backdrop of the protests that have taken place? Also, why is the church opposing the Foreign Contribution Regulation Act bill so strongly? Plenty, as always, on the show tonight. We'll talk to Gen Z. But first, as always, it's time for the 9 headlines at 9 tonight. Okay, but our big story that we are breaking at the moment, a short while ago, Mohan Bhagwat, the RSS Sarsangh Chalak, spoke at length on the Gen Z protests for the first time in an outreach at a convention held by a students group, IMUN. Mohan Bhagwat said, protest is legitimate. It is a means of dialogue. The students' grievances, he said, importantly, are genuine. The education system does need improvement, is what Mohan Bhagwat said. Said protests must be within the constitution's ambit. Today's generation is the most honest. Cannot talk on the crackdown without info, but it is not anti-national to protest, and Andolan is legitimate. So clearly, Mohan Bhagwat making his views clear, and many would say that they are rather different from what other RSS leaders have said, or indeed even members of the government who questioned the protest that took place and resulted in the resignation of Minister Dharmendra Pradhan. Let's begin by listening in to what Mohan Bhagwat had to say.
1: उज्जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अगर दो स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए. और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए. एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए.
2: करेक्ट,
1: तब सब ठीक रहता.
3: कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उनपे कई बार, जो इनोसेंट है उनके उनपे कई बार लाठी चार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे,
1: अब
3: ये सारे विषय के
1: और एक बात.
3: हाँ, आपको आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए,
1: ये जो बातें है ना
3: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा. जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
3: जी.
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा. मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं. आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं. आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था. वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा.
3: आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो. तो सर
1: इसमें वो मैं

0: साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
1: आप क्या मानते हैं?
0: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
1: अरे वाह, बढ़िया है।
0: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। जैन जी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जैन जी के बारे में, हम लोग जैन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे, तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी वो जैन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए।
2: ओके, सो देयर यू हर्ड मोहन भागवत सिंह, डायलॉग इसेंशियल, इट इज नॉट एंटी नेशनल टू प्रोटेस्ट, दीज आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ज्वाइनिंग मी नाउ are four young members of the audience who are associated with IMUN from different parts who've joined me to get their reactions. I am joined here by Yatharth, he's from Agra, by Burhan, who's from Kashmir, by Harsh, who's from Nanded, and by Alfia, who's from Gorakhpur but now lives in Mumbai. Good to have all four of you here. And I want to ask you, do you agree with Mohan Bhagwat when he said there should have been dialogue with the protesters, that these protesters are not anti-national? Do you believe that protests are legitimate?
3: Totally sir, protests are legitimate. जब तक वो संविधान के अंदर हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट करने चाहिए, और वही एक तरीका भी है सरकार को बताने का कि एक जैन जी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इतने सारे लोग ग्रुप क्या चाहता है। और जो मुझे लगता है कि आज मोहन भागवत जी ने हम सबके मन की बात बोल दी,
2: मोहन भागवत ने आपके मन की बात बोल दी। ओके, देयर इज अ डबल मीनिंग इन व्हाट यू आर सेइंग देयर बुरहान, बट योर व्यू, डू यू बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ डायलॉग विद जैन जी एंड नॉट कॉल योर एंटी नेशनल एवरी टाइम यू प्रोटेस्ट और रेज योर वॉइस?
4: Definitely, there should be, every protest is only effective when it is peaceful. So I believe it is very important that we don't call it anti-national, because this is completely for the youth, and we call youth the future of India. So my views are like definitely like this. So as a citizen of India and a youth of India, We definitely don't need perfections everywhere. We just need transparency and we just need accountability.
2: Okay, what about you, Harsh? You think that, you know, dialogue is the way forward, that those in power should be reaching out to the young?
5: Definitely, sir. I mean, one of the key things that stood out to me was when Mohan Bhagwat said that Samvad is one of the key things that has to come. I mean, he did acknowledge that protests are a legitimate form, but Samvad is something which has to come first. But again, the question becomes that when people in power don't come in front to do Samvad, how exactly are the students or any part of the society supposed to, you know, not go to the other mean? I mean, we've seen it everywhere. CANRC protests, we've seen JNU student protests, we've seen it all across the country, even when the Ken Batwa protests in MP, which still hasn't been resolved. They just picked up the protesters, took them away. There hasn't been any samvad there. So what about that? That was just one part of the entire
2: issue. So you're
5: issue.
2: Saying people, Gen Z is angry because there is no samvad taking place. Yeah. Is samvad about going on Instagram and reaching out? Political parties are now all going, their leaders are all going on Instagram. Is that enough? What do you mean by samvad? How do they do samvad?
5: I mean, for now we have like parties like the CJP, which is of course not something which represents the entire Gen Z to say, but I mean, it's one way forward. I mean, if the government cannot, you know, issue ways for them to interact with the youth, then I don't think youth has power in and itself for them to do something like that unless a leader comes in place. For example, Abhijit Deepke, I mean, which of course all of us agree

0: your masala box could be hiding a health hazard. In one of Hyderabad's biggest anti-adulteration crackdowns, Hyderabad Food Adulteration Surveillance Team and food safety officials raided 13 spice processing units across the city. The result? Nearly 25 tons of adulterated spices seized. Three people arrested. Three criminal cases registered.
1: Last 5-6 महीने से 600 से ज्यादा रेड्स हुए हैं, 300 से ज्यादा एफआईआर हुए हैं और इस मसले पे जो आज आपके सामने रखा गया है, इसमें जो है पॉइजनस चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जिसके रैपर्स पे भी लिखा हुआ है नॉट एडिबल एंड पॉइजनस, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एचपास टीम ने जो है कल्पेबल होमिसाइड 110 बीएनएस का केस भी बुक किया है.
0: The allegations are shocking. Investigators say the adulterated spices allegedly contained industrial and fabric dyes, along with talcum powder used to increase weight and improve appearance. Food safety officials warn that consuming such adulterated products could put consumers at risk of liver and kidney damage. Trigger digestive disorders and over-prolonged exposure increase the risk of cancer.
1: We abhi jo hai investigations chal rahe hain. जो जहाँ पे रेड हुआ है वो लोग बी टू बी टू पे सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सप्लाई करते हैं, वहाँ से फिर और कहीं कहीं छोटे बिजनेसमैन पे, वे रिटेल्स पे, फिर मार्ट पे, सब जगह जाता है. अभी हमारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग जहाँ जहाँ जाता है फुल प्रूफ के साथ फिर वापस आएंगे.
0: दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस. फ्रॉम फेक पनीर टू रॉटन मीट टू केमिकली राइपेंड फ्रूट्स, the list keeps growing. In just 140 days, the Hyderabad authorities say they have conducted 659 raids, registered 202 FIRs and seized 246 tons of adulterated food. Your spices should add flavor, not chemicals. The next time you open that masala packet, ask one question. Is it safe? Bureau Report, India Today.
2: So viewers, know what you're putting on your plate and stay safe and stay healthy. On that very note, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned as we come back after this break into the next hour with all the top stories and the latest updates in them. Thank you for watching. Stay tuned to India Today.

0: people poured out on the streets, and the government's response made things worse.
1: And it was becoming a citizen-first democracy. Rajiv Goswami in flames, and I think that, again, encapsulated the Mandel agitation.
2: आप ये बिल को लाना चाहते हैं हमारा जन लोकपाल बिल तो पार्लियामेंट में इस बल के बिल के बारे में चर्चा शुरू कर दो
1: There was a huge outpouring of anger against women's security.
3: कौन है? बेचारों जो हमारे घर में बात करते हैं, कुछ तो बताइए।

0: we are going to appeal against it. We are very disappointed. We believe the evidence in the case has not been appreciated. We believe there is enough evidence to very, very clearly exonerate him, not once, not twice, but 10 times over. हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना? हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से. हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो एक्चुअल मटेरियल था, एविडेंस था, उसको किसी ने नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या होगा.
1: तो आप सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप?
0: उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना. एडवांस में कैसे हम बता दें?
2: सर, 13 साल 4 हफ्ते का सर, 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते
0: हैं? मैंने जज को बोला, आप तो कोर्ट में थे, आपने सुना होगा. मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को कहल का पत्ते काटना है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें. बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं है, वाकई नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है. इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है.

0: stayed the bail and has now said that now Mhatre and all the other two accused can actually leave Maharashtra. Mhatre has said that he'll be staying at a resort in Goa and will be reporting to the Anjuna police, wherein an attendance will be marked for him every week that he'll be attending the police station there.
1: And of course, in this particular case, the biggest fear was also how he could influence the case, Vidya, for the very reason we've seen the sort of developments happen, even as we understand that the court has directed the state of Maharashtra to engage in a special public prosecutor, that too within the next 10 days, transfer it to a fast-track court. The prosecution also assuring that all the evidences, including voice samples, CCTV footage, photographs, all need to be examined. So, to ensure that it is a watertight case that is built, all the evidences are closely scanned and the case is fast-tracked.
0: In fact, the investigation in this case, if you remember, midway during the hearing earlier, the court had directed that, the way the investigation has started, the police seemed to be cooperating with Mhatre more than the victims. And that's one of the reasons why the case was handed over to a senior officer, a DCP-level officer, who is looking into this investigation of this entire case. And because of the impact that, as a politician, that Mhatre has on the people around there, and that's one of the reasons why he has been asked to leave the state of Maharashtra, stay in Goa or wherever he wants out of Maharashtra. And he's of course chosen a resort in Goa to where he'll be staying for the next many days until the trial begins. He can return to Maharashtra only when the trial begins in this case, as the court has specified in its order.
1: All right, Vidya, many thanks for getting us those details. Shifting focus now to the Jharkhand students' protest over the paper leak that has entered into its 14th day, but the deadlock continues. Government officials met the protesters, however, in an agreement that could not be reached, as the government is ready to hold talks only with protesters while they demand lawyer and journalists to be part of the talks. Student leader Devendra Nath Mahato, who is on a hunger strike over the paper leak, slammed the government and called it insensitive and warned that protesting students won't back off until their demands are met. The protesting students have formed an 11-member panel for talks. The government, on the other hand, has formed a 4-minister delegation to hold talks with protesters. The talks can and are likely to happen today. Meanwhile, CJP sent rain coats for the protesters amid heavy rainfall in Ranchi. The group has informed that their delegation will be visiting Ranchi and meeting the student protesters, reiterating that they support students' demands. The CJP also urged government to meet the demands of the protesters. Meanwhile, Rahul Gandhi spoke to the students over the phone, expressing support for their demands. He has promised to raise the issue in Parliament while urging them to continue their struggle.
2: इस तरह का कोई नहीं कोई स्वेच्छा से भी नहीं दे
3: स्वेच्छा से नहीं स्वेच्छा से आप लेकर ये खाना पीना और बांट दीजिए हम लोग कोर कमेटी के मेंबर्स सबको इसे मतलब रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार का हम लोग का पैसा लेना नहीं है
4: किसी का कैश देने आए हैं
5: सर आपके ऑनलाइन
4: आपके मतलब पैसे आप डोनेशन कर
5: अरे भाई बच्चे हैं ये अनएम्प्लॉयड हैं ये संघर्ष कर रहे हैं इनको तो जरूरत है इनको मदद आप जो मॉरली कीजिए फिजिकली कीजिए मेंटली कीजिए
4: रोज आते हैं लोग इस तरह से ऑफर
3: हाँ बहुत सारे सर हम लोग स्टार्टिंग दिन से ही है बहुत कुछ चेक हम लोग नहीं नहीं हम लोग एक रुपया पैसा नहीं चाहिए नहीं मेरे पास किसी पर क्यूआर कोड है ना ही किसी का अकाउंट हम लोग देते हैं हम लोग का कहना है कि आप अगर हम लोग का साथ देना चाहते हैं तो आप आइए और जो भी आपको लग रहा है कि कमी दिख रहा है इसमें क्योंकि धीरे धीरे ही इतना बड़ा भी खड़ा हुआ है सर ये जो पंडाल दिख रहे हैं बहुत छोटी से जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था बिना छत के हम लोग रहते थे
5: वहां से
4: किसी के मन में सवाल आता हो ना कि आंदोलनों को फंडिंग कहां से होती है एक बार आइए यहां जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा अब मैं यहां खड़ा था ये आके इनसे पूछते हैं जरा क्यूआर कोड दीजिएगा वो कह रहे कैसा क्यूआर कोड पैसा तो चाहिए ही नहीं जरूरत की चीजें या कोई किसानों ने 3 एकड़ का पूरा अपनी सब्जियां खीरा दे दिया कोई दुकान वाले हैं वो खाना लेकर के आ गए देश भर के जो युवा अलग अलग मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं उन्होंने स्विगी जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया
5: पहले एक मेडिकल किट दिया है
4: अच्छा
5: जिसमें बेटाडीन डिटॉल ये सब है बच्चे आते हैं भाई बारिश हो रही है भीग रहे हैं छोटा मोटा कहीं कटफट हो जाए चोट लग जाए
4: क्या करते हैं सर
5: मेरा सर्जिकल का एजेंसी है तो जो चूंकि मेरे लाइन का चीज है तो मैं वही मदद कर रहा हूँ
4: जिसके तो बूते जो है वो आंदोलन में अपने तरीके से शामिल है और शायद इसी वजह से 14 दिनों से ये प्रदर्शन इतना मजबूत हो पाया है रांची से लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा
6: देखिए अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं बहुत ज्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधि मंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं।
7: वहाँ के छात्रों से बहुत डिटेल में विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स है उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजीपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है, वो वही सभी प्रोटेस्टरों से बहुत डिटेल में विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स है उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी

0: हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है, वो वही सभी प्रोटेस्टरों से बहुत डिटेल में विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स है उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है, वो वही सभी प्रोटेस्ट
1: मिनिस्टर्स फॉर द डायलॉग एंड दे विल श्योर बिकॉज द हाई लेवल सोर्सेस इन द गवर्नमेंट से दे आर वेटिंग फॉर द फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑन द ओमार शेख अंटिल अनलेस दैट कम्स इवन फॉर द विथड्रॉइंग और कैंसिलेशन द एग्जाम रिजल्ट्स सम ग्राउंड इज रिक्वायर्ड बिकॉज इवेंचुअली दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड दे विल बी मूविंग टू द कोर्ट सो दे डोंट वांट लीगल हर्डल फॉर देम मोर सो ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल सच रीजन बट व्हाट वी हियर फ्रॉम सोर्सेस दैट सिचुएशन इज गेटिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स रिजॉल्विंग इट बिकॉज बाय दिस इवनिंग देयर विल बी अ मीटिंग बिटवीन द leadership, their delegation and the student delegation. But what is happening at the same time? It is the high group of drama, the action on the street, not only at Jaipal Singh Munda Stadium, but also on the street, the left-wing unions, the student organizations have also hit the street. And now they are marching. And remember, if the demands are not met, if there is no dialogue, on 10th of March, all the students all across Jharkhand will be marching to the assembly where the monsoon session is underway. So that's one of such organizations. This is where the students have also gathered of the left-wing ISA and other such unions and they have announced to march to the parliament, to the assembly, my apologies, sir, to the Jharkhand assembly where this is the second day of the monsoon session. So with the slogan ring, jhanda, banner, poster, all these students, they'll be marching any moment here. Of course, the police are barricading, the law and order machine have been placed. They will not be allowed to go to the assembly but it's a symbolic protest and that's how the democracy functions when the protesters are forcing the government the look, this is our demands. There you are in the government, and if there is some irregularities has been done, and which has been done, and had that not been a case, probably they would not have arrested 19 people so far. So their demands are legitimate. Look at the massive security arrangements have also been put in place because it's an assembly session. So beyond a few hundred meters, these protesters will not be allowed to march. All the preparations are in the final stage. These students will be marching to Jharkhand Vidhan Sabha any moment, any time soon.
2: All right, Ashutosh, we'll keep coming back to you for further updates. For the moment, one of the four protesters sitting on hunger strike in Ranchi, Rahul's health that deteriorated, following which doctors rushed him to the hospital. Rahul is on an indefinite hunger strike and has been without food and water for the last 4 days. He appeared for several examinations, but he did not get a job. He cleared the assistant teacher examination, but despite the recruitment process, he has not received an appointment. India Today's Ashutosh Mishra, who spoke to other students as well, who are on hunger strike. Listen in to what they said.
3: छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है। मैं इस समय जहां पर हूं, चार छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
4: क्या बोले
3: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
4: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। तो हमारा जो यहाँ का अभी नेतृत्व को संभाल रहे रविंद्र पासवान पीयूष और जो आगे पीछे कोर कमेटी में उनको इन्फॉर्म किए हैं, वो आएंगे उनके बाद इसको हम लोग देखेंगे क्या।
3: जब हमने भी सुबह इनसे बात करने की कोशिश की तो ये महसूस हो रहा था कि पल्स जो है काफी लेट हो रहे हैं और तभी उनको शरीर जो है बुखार से तप रहा है।
5: तैयारी करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है।
4: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। तो हमारा जो यहाँ का अभी नेतृत्व को संभाल रहे रविंद्र पासवान पीयूष और जो आगे पीछे कोर कमेटी में उनको इन्फॉर्म किए हैं, वो आएंगे उनके बाद इसको हम लोग देखेंगे क्या।
3: जब हमने भी सुबह इनसे बात करने की कोशिश की तो ये महसूस

0: कहीं इनको यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने?
1: क्या बोले
0: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
1: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। तो हमारा जो यहाँ का अभी नेतृत्व को संभाल रहे रविंद्र पासवान पीयूष और जो आगे पीछे कोर कमेटी में उनको इन्फॉर्म किए हैं, वो आएंगे उनके बाद इसको हम लोग देखेंगे क्या।
0: जब हमने भी सुबह इनसे बात करने की कोशिश की तो ये महसूस हो रहा था कि पल्स जो है काफी लेट हो रहे हैं और तभी उनका शरीर जो है बुखार से तप रहा है।
2: तैयारी करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है।
1: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। तो हमारा जो यहाँ का अभी नेतृत्व को संभाल रहे रविंद्र पासवान पीयूष और जो आगे पीछे कोर कमेटी में उनको इन्फॉर्म किए हैं, वो आएंगे उनके बाद इसको हम लोग देखेंगे क्या।
0: जब हमने भी सुबह इनसे बात करने की कोशिश की तो ये महसूस हो रहा था कि पल्स जो है काफी लेट हो रहे हैं और तभी उनका शरीर जो है बुखार से तप रहा है।
2: तैयारी करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है।
3: आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना क्या करना डेमोक्रेसी में इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर दो स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
4: बिल्कुल
3: उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए।
4: करेक्ट,
3: तब सब ठीक रहेगा।
5: कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनके उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे
3: अब
5: ये सारे विषय के
3: और एक बात।
5: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
3: ये जो बातें है ना
5: जी,
3: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
5: जी।
3: लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। जैन जी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में, हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे, तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी वो जैन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए।
5: मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये संवाद ऐसे बना रहे, क्योंकि जैन जी में एक चीज जो मैं जानता हूं कि मतलब सारी जैन जी ऐसे नहीं है कि मतलब वो सरकार के खिलाफ है या फिर कोई राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है, वो भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। तो आई डोंट थिंक द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैटर्स एज मच एज देयर एस्पिरेशन, एंड वो एस्पिरेशन लोगों को समझ में आएगी जब ही बातचीत होगी और संवाद होगी। आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा सरकार को भी कि ऐसे संवाद करते रहे और एक्चुअली जो जेन जी की जो प्रॉब्लम्स है उन तक पहुंचेगी, वो सोल्यूशन बनाएगी। मुझे तो उम्मीद है कि सरकार भी बनाएगी और विपक्ष भी बनाएगा, साथ में मिलकर बनाएगी।
6: आई थिंक इट्स लिटिल टू लेट, डोंट यू थिंक? दे शुड हैव हैड एन इंटरेक्शन ऑन 20th जुलाई व्हेन दिस किड्स वर बिटन अप। मोहन भागवत बीइंग आई थिंक द मेंटर ऑफ द बीजेपी, द गॉडफादर ऑफ द बीजेपी, ही शुड हैव कम फॉरवर्ड, ही शुड हैव इंटरेक्टेड विद दोस किड्स एंड ही शुड हैव मेड द प्राइम मिनिस्टर अपोलोजाइज टू दोस किड्स हु वर बिटन अप बाय द पुलिस ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। ऑल्दो इफ ही विशेस टू इंटरेक्ट विद द जेन जी इट्स अ गुड थिंग, That means the youth of this country, the Gen Z, have compelled these people.

0: मेरी बेटी ने
1: कर दिखाया।
2: हमने डिस्कस किया कि बेटा जो पैदा भी नहीं है उसको भी जाना है। अब आपके फादर जा चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट? आपके फादर का सपना तो जिंदा है, ही इज वॉचिंग यू। तो जिस दिन उनकी 13वीं हुई थी, सेम डे ये वापस आई थी, और जो फर्स्ट फ्लाइट टिकट मिली हमें, क्योंकि मुझे पता था इंडिया में दोस्तों से मिलेगी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी, इमीडिएटली इसको यूरोप भेज दिया था। और इसने बहुत हिम्मत दिखाई मैम, शी वॉज द लाइटेस्ट एंड सबसे यंग लड़की थी मेरी अकेडमी में जब मैं 2018 में साई ज्वाइन किया था। इसके अंदर वो मैडम विल पावर थी।
3: Watching Asmita Day's victory today, the next generation is already gearing up.
4: जब वो जीती तो लगा था भारत को रिप्रेजेंट कर रहे, तो भारत पहली बार जूडो में जीता, बहुत अच्छा लगा।
5: I was feeling very good that she represented our Bharat.
6: Bharat, very good.
3: That is what inspiring figures do. She rose to become a shiro. But Asmita Day is really just a drop in the ocean. Inspired from her, there are several countless young girls and boys as well, this time in judo. Some of them are treating it as a hobby, but for many of them, they believe this hobby can turn into passion, into profession, and a medal for their country, for the tricolor on the podium. That's what these medal winners do. With their strength and hard work, they inspire millions. With Satya Rothre, Pooja Shali for India Today.

0: We are going to appeal against it. We are very disappointed. We believe the evidence in the case has not been appreciated. We believe there is enough evidence to very, very clearly exonerate him, not once, not twice, but 10 times over. हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना? हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से. हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो एक्चुअल मटेरियल था, एविडेंस था, उसको अपील नहीं किया है. तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या होगा.
1: तो आप सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप?
0: उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना. एडवांस में कैसे हम बता देंगे?
2: 13 साल, 4 हफ्ते का सर, 13 साल से केस चल रहा है. कैसे देखते
0: हैं कि मैंने जज को बोला, आप तो कोर्ट में थे, आपने सुना होगा. मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को कहल का पत्ते काटना है. उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें. बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं है, वाकई नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है. इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी.
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
4: Oh, sorry.

0: different quarters, people are sending food, logistics, essentials, and at the same time, supporting their number, the cause, since it's a noble cause, and they are only exercising the fundamental right. So announcement
1: Hitosh, my question to you is that these students...
0: That the march will continue.
1: Ashutosh, if you can hear me. These students have pointed out serious irregularities with the state recruitment examinations. They have said that answer sheets were shared online. They have said that exam contract was awarded to agency accused of irregularities earlier also. And this has led to the resignation of the Public Service Commission chairman already. But we are seeing a lot of anger in the students. We're seeing a lot of comments coming in. And now they've also been asking opposition leaders, political parties to give them support. What are you picking up from the people there? Because I can see from your visuals that this meeting is ongoing. The leaders of the protest are talking to the government delegation. But what are the people around you saying, really?
0: Well, people are only hopeful. No one, none of these students or their family member or their loved one or their even friends wants to be here at the protesting site. By now, they should be giving examinations, preparing in their libraries, studying. It looks like the meeting is almost over. So there have been accusations even on the 14th through 13th JPSC, even with the 14th JPSC that has happened. So all they want is an assurance and a transparency in the system, because this is not some battle against the government. This is the battle against the system. You have to fool you. क्यों खड़े हैं
2: फूल ये हम लोग को दिया गया सर हम लोग यहाँ पे वॉलंटियर हैं
0: अच्छा
2: तो कोई भाई की ओर आए थे भाई सब कोई आए थे पता नहीं सर
0: अच्छा ये बातचीत तो हो रही है स्टूडेंट्स को लेकर की इतनी सारी परीक्षा को लेकर की कहीं समाधान की उम्मीद आप लोग को नजर आ रही है
2: सर उम्मीद तो है तभी हम जो वार्ता भी हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि उम्मीद है अगर उम्मीद नहीं रहती तो हम लोग वार्ता करते ही नहीं फिर तो हम लोग जो आगे जैसे और भी छात्र करते हैं उग्र जो अपना रूप अपनाते हैं वैसा अपनाते हैं
0: इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है
3: ताकत यही है
2: अनुशासन रही है सर
0: अनुशासन रही है
2: बिल्कुल सर
0: कौन मदद करता है इस अनुशासन को इन छात्रों को इतना मोबिलाइज होने के बाद
2: कोई मदद नहीं करता सर हम छात्र ही हैं और ये बात ऐसी है ना कि जहाँ पे छात्र रहेंगे जहाँ पे पढ़े लिखे छात्र
1: आशुतोष देयर टॉकिंग टू द प्रोटेस्टर्स एट द साइट एंड ब्रिंगिंग अस द लाइव विजुअल्स ऑफ द गवर्नमेंट डेलीगेशन स्पीकिंग टू द लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्ट Remember, the Jharkhand student protest over the paper leak has entered its 14th day, but the deadlock seems to be continuing. The government officials are meeting with the protesters. However, an agreement does not seem to have been reached so far, as the government is ready to hold talks only with the protesters, while they demand lawyers and journalists should also be part of the talks. Student leader Devendranath Mehto, who's on a hunger strike over the paper leak, slammed the government, called it insensitive and warned that protesting students will not back off unless their demands are met. The protesting students have formed an 11-member panel for the talks, and we just saw the visuals of that panel talking to the delegation that had been sent in once again. The government, on the other hand, has formed a 4-minister delegation to hold talks with the protesters, and the talks are likely to happen today. Meanwhile, the Cockroach Janata Party sent raincoats for the protesters amid heavy rainfall in Ranchi. The group has informed that their delegation will be visiting Ranchi and meeting the student protesters, reiterating that they support student demands. The CJP also urged the government to meet the demands of the protesters. And meanwhile, Rahul Gandhi spoke to the students over the phone, expressing support for their demands. He has promised to raise the issue in Parliament, while urging them to continue their struggle.
4: इस तरह का कोई नहीं कोई स्वेच्छा से भी नहीं दे
5: स्वेच्छा से नहीं स्वेच्छा से आप लेकर ये खाना पीना और बांट दीजिए हम लोग कोर कमेटी के मेंबर से सबको इसे मतलब रिक्वेस्ट है किसी भी प्रकार का हम लोग का पैसा लेना नहीं है
0: किसी का कैश देने आए हैं
6: सर आपके ऑनलाइन
0: आपके मतलब पैसे आप डोनेशन कर
6: अरे भाई बच्चे हैं ये अनएम्प्लॉयड हैं ये संघर्ष कर रहे हैं इनको तो जरूरत है इनको मदद आप जो मॉरली कीजिए फिजिकली कीजिए मेंटली कीजिए
0: हो जाते हैं लोग इस तरह से ऑफर
5: हाँ बहुत सारे सर हम लोग स्टार्टिंग दिन से ही है बहुत कुछ चेक हम लोग नहीं नहीं हम लोग 1 रुपया पैसा नहीं चाहिए नहीं मेरे पास किसी पर क्यूआर कोड है ना ही किसी का अकाउंट हम लोग देते हैं हम लोग का कहना है कि आप अगर हम लोग का साथ देना चाहते हैं तो आप आइए और जो भी आपको लग रहा है कि कमी दिख रहा है इसमें क्योंकि धीरे धीरे ही इतना बड़ा अभी खड़ा हुआ है सर ये जो पंडाल दिख रहे हैं बहुत छोटी से जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था बिना छत के हम लोग रहते थे
0: वहां से किसी के मन में सवाल आता हो ना कि आंदोलन को फंडिंग कहां से होती है एक बार आइए यहाँ जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं यहाँ खड़ा था, ये आके इनसे पूछते हैं जरा क्यूआर कोड दीजिएगा। वो कह रहे हैं कैसा क्यूआर कोड, पैसा तो चाहिए ही नहीं, जरूरत की चीजें हैं। कोई किसानों ने 3 एकड़ का पूरा अपनी सब्जियां थी खीरा दे दिया, कोई दुकान वाले हैं वो खाना लेकर के आ गए, देश भर के जो युवा अलग अलग मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं उन्होंने स्विगी जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया।
6: पहले एक मेडिकल किट दिया है,
0: अच्छा,
6: जिसमें बेटाडीन डिटॉल ये सब है। बच्चे आते हैं भाई, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, छोटा मोटा कहीं कटफट हो जाए, चोट लग जाए।
0: आप क्या करते हैं सर?
6: मेरा सर्जिकल का एजेंसी है, तो जो चूंकि मेरे लाइन का चीज है तो मैं वही मदद कर रहा हूँ।
0: जिसके तो बूते जो है वो आंदोलन में अपने तरीके से शामिल है और शायद इसी वजह से 14 दिनों से ये प्रदर्शन इतना मजबूत हो पाया है। रांची से लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा।
7: देखिए अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधि मंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं।
8: वहाँ के छात्रों से बहुत डिटेल में विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स है उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजीपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है, वो वही सभी प्रोटेस्टिंग छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे, उनका साथ देंगे और उनको जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा सीजेपी की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। और जल्द ही हम लोग भी झारखंड जाकर प्रोटेस्टिंग छात्रों के साथ बैठेंगे।
9: जैसा आप लोगों ने देखा, कल मैं देवेंद्र नाथ महतो जी से जुड़ा था और उनके जल का जो अनशन था उसको मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि वो जल ग्रहण करें, मगर बहुत से मीडिया हाउसेस ने गलती से ये छापा कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत है, जल ग्रहण किया, अन्न ग्रहण नहीं किया, ये मैं साफ करना चाहता हूँ। और जिन मीडिया हाउसेस ने गलती से ये छापा है उनसे कहूंगा कि गलती सुधार करें और इसको साफ करें, क्योंकि ये बहुत गलत संदेश देता है।
1: Meanwhile, the politics over this issue is continuing. Listen into these comments.
10: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
1: It's time now for us to take a very short break. On the other side, our entertainment bulletin in the cloud. Keep watching India Today.

0: we are going to appeal against it. We are very disappointed. We believe the evidence in the case has not been appreciated. We believe there is enough evidence to very, very clearly exonerate him, not once, not twice, but 10 times over. हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना? हम लोग बिल्कुल माखुश हैं इस जजमेंट से. हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो एक्चुअल मटेरियल था, एविडेंस था, उसको अपील नहीं किया है. तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या होगा.
1: तो आप सरेंडर कर रहे हो? सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप? तो
0: उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना आपको. एडवांस में कैसे हम बता देंगे?
2: सर, 13 साल से 4 हफ्ते का सर, 13 साल से केस चल रहा है. कैसे देखते हैं कि
0: मैंने जज को बोला, आप लोग कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को कहीं का पते काटना है. उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें. बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं है, वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार बढ़ जाती है. इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है.

0: करने की इच्छा रखती है।
1: स्टूडेंट लीडर देवेंद्रनाथ महतो हु इज ऑन अ हंगर स्ट्राइक हिट आउट एट द गवर्नमेंट अक्यूजिंग इट ऑफ बीइंग इनसेंसिटिव टुवर्ड्स स्टूडेंट्स।
2: देखिए अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं बहुत ज्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है।
1: Amid heavy rain, the Kokra Janata Party sent rain coats for the protesters and reiterated its support for the ongoing agitation.
3: बाकी छात्रों से बहुत डिटेल में विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए।
1: Meanwhile, Rahul Gandhi finally broke his silence on the issue. After interacting with the protesting students, he extended his support to the movement.
4: हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार।
1: The BJP, meanwhile, continued to corner the Jharkhand government over the alleged paper leak and recruitment controversy.
5: ये सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार के अंदर कोई संवेदनशीलता होती तो मैं समझता हूँ कि मामला को सॉर्ट आउट कर लेते। यहाँ तो सरकार ही इन्वॉल्व है।
1: While the government's willingness to hold talks is being seen as a positive step, whether the dialogue can break the deadlock remains to be seen. With Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
6: And if you thought Gen Z could protest, well, Gen Alpha is here now to tell you how to get things done in the country. From broken classrooms and missing teachers to accessibility and campus welfare, Gen Alpha is taking the lead in demanding better education. They've learned. Across Rajasthan and Uttarakhand, students are no longer waiting for authorities to act. They are stepping onto the street to fight for their right to safe, inclusive and functional educational institutes. In Jaipur, Bharatpur, Dehradun, students have launched protests over crumbling infrastructure, teacher shortages, inaccessible facilities and even administrative neglect. Their message is clear. Quality education begins with basic necessities. It begins with accountability and it has to have dignity. In Jaipur, for instance, let's look at what's happening there. Differently able, specially able students staged a silent demonstration in sign language to demand their basic amenities. In Bharatpur, students locked their school gates, saying they cannot study without enough teachers. These are not protests over policy. These are not protests for anybody's resignation. These are protests for basics, for a safe classroom, for clean toilets, for drinking water, and most importantly, for teachers. Deaf and mute students proved that you don't need really words to be heard. There was silent sit-in conducted entirely in sign language. They highlighted years of neglect and forced the administration into taking action.
7: दिव्यांग बच्चे जो पढ़ने आते हैं क्लास में वो डरते हैं, इस तरह से देख सकते हैं पानी टपक रहा है, किस तरह से छतों से यहाँ पर पानी टपकता है। बाहर भी देख सकते हैं आप किस तरह की स्थिति, अभी भी आपको पानी टपकता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। और इस तरह से कभी भी इन्हें डर सताते रहता है कि ये छत नीचे आ सकती है, जिसकी वजह से ये हमेशा डरे रहते हैं। कई जगह कहते हैं कि जब पढ़ते बैठते हम लोग तो सिर पर आकर छत से मलबे गिरते हैं। बच्चे बहुत सारे डरे भी रहते हैं, ऊपर से गिर जाता है मलबा।

0: we are going to appeal against it. We are very disappointed. We believe the evidence in the case has not been appreciated. We believe there is enough evidence to very, very clearly exonerate him, not once, not twice, but 10 times over.
1: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना?
0: हम लोग बिल्कुल वहां खुश हैं इस जजमेंट से. हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो एक्चुअल मटीरियल था, एविडेंस था, उसको अप्रिशिएट नहीं किया है. तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या होगा.
2: तो आप सरेंडर कर रहे हो? सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप?
0: उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना आपको. एडवांस में कैसे हम बता देंगे?
3: सर, 13 साल, 4 हफ्ते का सर, 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते हैं कि ये?
0: मैंने जज को बोला, आप तो जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को कहल का पत्ते काटना है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें. बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं है, वाकई नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है. इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी है.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: People poured out on the streets, and the government's response made things worse.
1: And it was becoming a citizen-first democracy. Rajiv Goswami in flames, and I think that, again, encapsulated the Mandal agitation.
2: आप ये बिल को लाना चाहते हैं हमारा जन लोकपाल बिल तो पार्लियामेंट में इस बल के बिल के बारे में चर्चा शुरू कर दो.
1: There was a huge outpouring of anger against women's security.
3: कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन

0: We are going to appeal against it. We are very disappointed. We believe the evidence in the case has not been appreciated. We believe there is enough evidence to very, very clearly exonerate him, not once, not twice, but 10 times over. हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना? हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से. हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो एक्चुअल मटेरियल था, एविडेंस था, उसको किसी ने नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या होगा.
1: तो आप सरेंडर कर, सरेंडर कर रहे हो? सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप?
0: उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना आपको. एडवांस में कैसे हम बता देंगे?
2: सर, 13 साल, 4 हफ्ते का. सर, 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते
0: हैं कि ये? मैंने जज को बोला, आप तो कोर्ट में थे, आपने सुना होगा. मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को कहल का पत्ते काटना है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें. बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं है, वाकई नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है. इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है.

तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है। ये केस यानी गोवा की इस भूमि में हुई थी, इसके लिए यानी कंटिन्यूसली फॉलोअप करना, यानी गोवा सरकार, गोवा पुलिस और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इनका काम था, और हमारी सरकार ने कंटिन्यूसली इस केस का फॉलोअप किया और आज उसका अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ। उसमें युवती के साहस को भी मैं नमन करता हूँ, कंटिन्यूसली उसने फॉलोअप किया, वो कंटिन्यूसली यानी कोर्ट में आती रही, इसलिए भी मैं सही में उसको सैल्यूट करता हूँ।

0: your masala box could be hiding a health hazard. In one of Hyderabad's biggest anti-adulteration crackdowns, Hyderabad Food Adulteration Surveillance Team and food safety officials raided 13 spice processing units across the city. The result? Nearly 25 tons of adulterated spices seized. Three people arrested. Three criminal cases registered.
1: Last 5-6 महीने से 600 से ज्यादा रेड्स हुए हैं, 300 से ज्यादा एफआईआर हुए हैं और इस मसले पे जो आज आपके सामने रखा गया है, इसमें जो है पॉइजनस चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जिसके रैपर्स पे भी लिखा हुआ है नॉट एडिबल एंड पॉइजनस, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एचपास टीम ने जो है कल्पेबल होमिसाइड 110 बीएनएस का केस भी बुक किया है.
0: The allegations are shocking. Investigators say the adulterated spices allegedly contained industrial and fabric dyes, along with talcum powder used to increase weight and improve appearance. Food safety officials warn that consuming such adulterated products could put consumers at risk of liver and kidney damage. Trigger digestive disorders and over-prolonged exposure increase the risk of cancer.
1: We abhi jo hai investigations chal rahe hain. जो जहाँ पे रेड हुआ है वो लोग बी टू बी टू पे सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सप्लाई करते हैं, वहाँ से फिर और कहीं कहीं छोटे बिजनेसमैन पे, वे रिटेल्स पे, फिर मार्ट स्मार्ट पे, सब जगह जाता है. अभी हमारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग जहाँ जहाँ जाता है फुल प्रूफ के साथ फिर वापस आएंगे.
0: दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस. फ्रॉम फेक पनीर टू रॉटन मीट टू केमिकली राइपेंड फ्रूट्स, the list keeps growing. In just 140 days, the Hyderabad authorities say they have conducted 659 raids, registered 202 FIRs and seized 246 tons of adulterated food. Your spices should add flavor, not chemicals. The next time you open that masala packet, ask one question: is it safe? Bureau Report, India Today.